जल धारे कर दे हो। ओ नौ निधियां अठारह सिद्धियां साडे गुरसिखां दे अगे हाथ जोड़ के खलो जांदियां ने भी सानू हुक्म करो दसो की वरतारा वरताईए। धन गुरु अर्जन देव जिया नू भी बेनती कीती महाराज आप जी हुक्म करो पातशाह ततियां तवियां ते तुहानू बैठण दी लोड़ नहीं असी दिल्ली ते लाहौर दे तख्त नू आपस विच ताड़ी मरवा करके चूर कर देवांगे। महाराज ने आखिया नहीं पाई। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी चांदनी चौक दे विच बैठे उथे भी बेनती कीती सी महाराज आप जी कृपा करो असी हवा ही ऐसी चला देवांगे ए सारी औरंग जेब दी जेड़ी फौज आ स्वासा तो हीणी कर देवांगे मार मकावांगे आप जी हुक्म करो। पातशाह जी आखण लगे नहीं पाए। जदो दसवें पातशाह महाराज चमकौर गढ़ी दे विच चाली गुरसिखां नू लै करके खलोते ने उस वेले भी रिद्धियां सिद्धियां ने बेनती कीती सी महाराज तुसी सानू हुक्म करो जी तुहानू कुछ करन दी लोड़ नहीं तीर चलाउण दी भी लोड़ नहीं असी ऐसी हवा बग के इन्हां दे अंदर जा लंघांगे इन्हां नू स्वासे तों हीणे करके मार मकावांगे। पातशाह जी आखण लगे नहीं पाई। साडा ता कार्ज ऐसा है इजाजत ही नहीं है हमको जंग की मिट्टी तक उड़ा सकते है दुश्मन के बदन की सानू ते हुक्म ही नहीं साडा ते नहीं एक एक तीर इन्हां नू पार करके सुकियां पार हो जावे असी जंग करना चाहुंदे नहीं ए जंग करन लई आए ने इन्हां दा असी मोड़मा जवाब दे रहे हां। एदां फिर धन गुरु रामदास जी आखदे पाई ए जेड़े साडे गुरसिख ने ना ए रिद्धियां सिद्धियां इन्हां दे मगर

ओदो जेड़ा तुहाड़ा मन है ना ओह ते संसार दियां खेड़ां विच खेड़दा हुंदा है। तुसी अंतर ध्यान हो करके एक थां ते बैठे हुन्ने हो ते तुहाड़ा

रामदास महाराज आखदे भाई जेड़ा तुहाडा ए शरीर है ए तुहाडा नगर है ए पिंड है ते तुहाडे पिंड दे विच जेड़ी खेती है हरदे रूपी खेत है एदे विच जेकर शुभ गुणा दी तुसी फसल अगाउना चाहुंदे हो पालना चाहुंदे हो शुभ गुणा नू वड के लाहा लेना चाहुंदे हो फिर जेड़ा तुहाडा मन रूपी बल्द है।

सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप

गुरु जी की फतेह। परम सम्मान जो गुरु की साध जी निवाजी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चवर शतर तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार कृपा मेहर अहमत होई है। सतगुरां दे हजूर सुंदर दीवान सजे हन सजे दीवाना अंदर आपां नेता प्रत गुरु की गुरबाणी गुरु का संथिया साध संगत जी धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दी कार सुन रहे हां। सो साध संगत जी सतगुरु सचे पातशाह जिया ने महान साडे कलयुगी जीवां ते तरस कीता है। साध संगत जी 442 अंग तक सतगुरां दी पावन संथिया हुण तक आपां सहज पाठ रूप सरवण करी है।

0: नहीं गल बनती। जे परमेश्वर का मिलाप करना है गुरबाणी नूं गहराई नाल सुन के उहदे ते मन्नण कीता जावे ते गुरबाणी दी कल्ली कल्ली गल नूं अपने जीवन दे विच लागू करके असीं इह सारियां चीजां कर सकदे हां। सो साध संगत जी जिथे असीं हुण ध्यान संगत दे चरणां च बेनती है ला के रखना जिथे जरूरत पवे आप संगतां नूं शुरुआती दिनां च वी बेनतियां कीतियां सी आप सवाल कर सकदे हो बहुत अर्थ आप जीआं नूं क्लीयर हो रहे हन जिथे जरूरत पवे आप जी अपना सवाल जरूर करो। सो सचे पातशाह महाराज धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा कर रहे हन 442 अंग तों सतगुरु जी दी पावन बाणी प्रारंभ हो रही है।
1: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

0: पूजी ही पाठ उच्चारण करने जी।
1: मेरा ठाकुरो मेरा ठाकुर नीका, नीका बोलना, निक्का नहीं, नीके तो भाव चंगा है। हाँ जी।

0: गोविंद गुरु है। पहले ते गगे ते ज्यादा जोर दे के होड़े ते, दूसरे ते दरम्यानी जी आवाज ला के गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई।
1: आसा महला चौथा।
0: साध संगत जी कही इथे गुरु च ते परमेश्वर वाहिगुरु दे विच भेद रखदे ने, कहिंदे ने कि गुरु ते परमेश्वर दे विच फर्क है। इथे इस पंक्ति नूं, पंक्ति च सच्चे पातशाह सानू इह स्पष्ट करदे हन, गुर गोविंद, गोविंद गुरु है, भाव गुर जिहड़ा कला गुर शब्द है जिहदे रारे नूं कोई मात्रा नहीं, इहदा अर्थ है गुरु। जिवें अज गुरु ग्रंथ साहिब जी दे असीं सिख हां, गुरु नानक साहिब तों लै के दस गुरुआं दी जोत तक ओह सरगुण सरूप नूं इत्थे गुर कहा गया है। ते गुरु तों भाव रारे दी दुलैंकणां दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु पति परमेश्वर जिहड़ा सारिआं दा सांझा है। महाराज कहिंदे भाई गुर गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। इन्हां दोवां च कोई फर्क नहीं है, परमेश्वर ते गुरु च फर्क ना जाणो। कई वार अज साध संगत जी ए दास नूं इत्थे ही पता लगा भी कई ए भी तर्क करदे ने कि गुरु साहिब दा नां नहीं लैणा चाहीदा, सानू अकाल पुरख वाहिगुरु नूं ही मनण दी लोड़ है। भाई ये बहुत माड़ी गल है, गुरु तो बिना साडा छुटकारा नहीं होना। असीं मूल मंत्र पढ़दे हां, गुर प्रसाद दा मतलब ही ए साध संगत जी गुरु दी कृपा, जिन्ना चिर गुरु दी कृपा ना होई उन्ना चिर अकाल दा मेल नहीं होना, ना ही दोवां दे विच कोई भेद जानना, दोवां नूं एक मिक करके जानना।

निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने भ्रमदा भरम भुलाया। मनुख दे प्राणा विच जिहड़ी प्रबल प्यास है वह जीवन दी है, सदीवी जीवन दी है। फिर जीवन तो बाद जीवन लई सारियां लोड़ां सारियां मंगां, लेकिन प्रबल ते प्रथम प्यास जीवन दी है। भय भी केवल मौत दा ही है और कोई भय नहीं। जिथे भी मनुख भयभीत होवे समझ लो कुछ ना कुछ इस दे खत्म होने वाला है या खत्म होने की संभावना। भय उसे दी है, चाहत लालसा जीवन दी और प्रबल भय मौत दा। जे भारत दे सनातन चिंतन नु वेखिए, उपनिषदां दे ऋषियां नु वेखिए, पुराणक प्रसंगां नु देखिए, तो जीवन दा दाता दाता विष्णु, मौत दे देण वाला शिव जी। ब्रह्मे ने संसार बनाया, उदा कोई मंदिर नहीं, बन गया संसार सो बन गया, जन्म हो गया सो हो गया। हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा, तो सारे देश दे विष्णु दी पूजा शिव जी दी पूजा हिंदू जगत दे। विष्णु नाल लक्ष्मी है, जीवन ते जीवन दिया सारियां लोड़ां दी पूर्ति। पर शिवजी दे गले देखते फनियर नाग ने, मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है। शमशान घाट दा शिवजी दा वह सेवा है, मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है, जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल पदार्थां नाल संबंधित है। एक प्रतीक है लालसा परबल जीवन दी है, भय परबल मौत दा है। जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बने आ रहे बने आ रहे बने आ रहे। मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते कि कम से कम मौत साडे घर ना आवे। एक दी पूजा इस वास्ते तू साडे घर आ, क्योंकि उस नाल लक्ष्मी है। एक दी पूजा इस वास्ते कम से कम तू साडा घर छोड़ दे, क्योंकि तेरे गले दे सप्प ने, मुर्दियां दी खोपड़ी है और तेरा वसेबा शमशान दा है। बहुत सुंदर ये प्रतीक चुने है। मनुख दी कमजोरियां नू खूब समझे है ते नापिया गया है। लालसा जीवन दी है और भय केवल मौत दा है। मनुख कितना जीवना चाहता है, कितनी जीवन दी लालसा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है, जे जुग चारे आर जा होर बसोनी हो रहे। जे किधरे उम्र चार जुगां दी हो जाए, लखों साल दी हो जाए, तो फिर होर दस गुणा वध हो जाए, होर दसोनी होए,
सिर्फ जीवन ही इतना लंबा ना होवे, नवा खंडां विच जाणीए नाल चले सब को। नौ खंड पृथ्वी दे पूजा ते प्रतिष्ठा होवे, प्रतिभाशाली होवे, जाणिया जाए, समझिया जाए, पूजिया जाए, सत्कार लई सारे प्रतिष्ठित लोग नाल चलन ते सन्मान देन। महाराज ने मनुख दी इस मंग नो बड़े सोहने ढंग नाल समझे ते बयान कीता है। नवा खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए के जस की रथ जग ले। प्राणा विच होर भी प्यास है, सारे मैनू चंगा चंगा करके आखन, महान आखन, पूजन। पर जे किस नदर ना आवई ता वात ना पुछे। जे नौ खंड पृथ्वी दे मनुखां दी निगाह दे थल्ले भी कोई आ जाए, लखां साल दी उसकी आयु हो जाए, जो परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तां कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल लंबे जीवन दी लालसा ते भय मौत दा बस इन्हां ही दोहां उलझना दे मनुख दा जीवन बतीत होंदा है, और बार बार बतीत होंदा है, बार बार जमदा है जीवन दी लालसा ते मरण दे भय दे, एक दिन मर जांदा है, खत्म हो जांदा है। आद काल तो मनुख दी तलाश रही है अमृत दी, अमृत मृत्यु तो रहे जिस विच मौत नहीं, कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा जल, कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसी सौगात किधरों प्राप्त होवे जिस नाल मौत ना आवे, अमृत जीवन मृत्यु तो रहित हो जाए, जीवन अमृत हो जाए। हर मनुख जीवन में अमृत बनाना चाहता है, और हर मनुख ही क्यों, मौत के पशु पक्षियों को भी नहीं चाहिए, उन्होंने अंदर भी भय कि सिर्फ इसे रही है। जीवन की लालसा जीवां दे बड़ी प्रबल दिखाई, प्रबल दिखाई देती। अमृत की चाहत, अमृत की मंग प्रथम मंग है, फिर मोहर मंग है, प्रबल मंग है। सतगुरु की बाणी का समान घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया ज्यों कस्तूरी मृग न जाने भ्रमदा भरम भुलाया। वो अमृत का कुंड इसी जीवन सागर के अंदर है, और इसी जीवन का रेड़का पाना पड़ेगा। जप तप द्वारा इसी अमृत के कुंभ नो बाहर प्रगट करना पड़ेगा। इस अमृत के कुंभ नो कोई प्रगट कर सके इसके लिए एक प्रेरणा चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए, इसके लिए एक तड़प चाहिए, इसके लिए साधना चाहिए। तो जैसे असी देखते हैं हैंडपंप ना जब गेड़न दे नाल पानी ना निकले, उपरों पानी पाते हैं, फिर पानी निकलना आरंभ होता है। आदि काल तो महापुरुष कोशिश करते रहने बाहरों अमृत पिलाण दी ताकि अंदर का अमृत प्रगट हो जाए, बाहर आ जाए। एक विधि रही है बाहरों अमृत का संबंध स्थापन करके जीवन दे अंदरों अमृत नू प्रगट करना, यह साधना
ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਪਿਆਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਜਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਧੂੜ ਵੀ ਅਕਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ। ਸਨਾਤਨੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲ, ਕਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਅੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ, ਤੋ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਕਿਧਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ, ਤੋ ਉਹ ਜਲ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੋ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਲੋਕ ਲੱਭਣੇ ਸਨ, ਤੋ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਨਦ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੰਦ। 22 ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, 19 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਪ ਤਪ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਪ ਤਪ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵਧੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਧੇ, ਜਪ ਤਪ ਵਧੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ऐसा अक्सर घट होता है। जैसे धन वधता है धर्म घटता है, जैसे बाहर दे सुख वधदे ने अंदरूनी सुखा नाल सहजे सहजे मनुख संबंध तोड़ता है। मसंदा ने भी ऐसा ही किया। धन दे घर दे अंबार लग गए, पूजा प्रतिष्ठा चार कुंटा च होने लग पई। सहजे सहजे गुरु दे सिख बनान दी थां ते इना दे अंदर ये लालसा जागी अपने सिख बनाई, अपने सिख बनाई, अपनी सिखी का वादा करिए। लिहाजा कार भेट जो मिलती सी गुरुद्वारे बनाण लई, सरोवर बनाण लई, धर्मशालावां बनाण लई, लंगर चलाण लई, उस कार भेट नूं भी ये पूरे का पूरा खुद अपने कोल रखण लगता है, गुरु तक नहीं पहुंचांदे। इन्हां विच कुछ कने थे गुरु होण दे दावे भी कर दिते, सहजे सहजे भ्रष्ट होंदे गए, लोभ दे मारे हुए वासना विच ग्रसे गए, और वासना दे ग्रसे हुए परबल हंकार विच डुबदे गए। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंच के ए मसन जुलम ते दुराचार दी इंतहा तक पहुंच गए सन। लिहाजा इस प्रथा नूं धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खत्म कर दिता। आख्या नहीं, कल्ला मनुख चाहे रसक है, अनुभवी है, ज्ञानी है, कई दफा हो सकता उसका आत्मा कमजोर होवे और वो पूजा प्रतिष्ठा नूं हजम ना कर सके, बाहर दी धन संपदा नूं हजम ना कर सके। असी हुण भी देखते हैं जगत विच कोई मनुख मेहनत करके धन कमा के लैंदा है, लेकिन धन दी सही वरतों, धन दी हिफाजत और धन दा विस्तार, धन दी वरतों किसी किसी नूं जो है आउंदी है। अध्यात्मक आनंद थोड़ा बहुत प्राप्त करके जद मसन चोटी दे धनाड हो गए, हंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, अत्यंत लोभी हो गए, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये प्रथा चरणामृत की थां ते खंडे बाटे दा अमृत और बाणी दा अमृत ये प्रचलित आपने कीता, और ये अधिकार एक नो नहीं पंजां नूं दिता। पंज आइंदा अमृत छकाया करनगे। किहड़े पंज? जो गुरु नूं प्यारे ने, जिन्हां दे अंदर गुरु का प्यार है, रोम रोम विच गुरु का प्यार। ऐसे पंज जो गुरु नूं प्यारे ने, ते गुरु का प्यार जिन्हां दे अंदर है, वो वारी वारी पंज बाणियां पढ़न। जपजी साहब, जाप साहब, सवई है, चौफई ते आनंद साहब। पंज अपनी दृष्टि नूं बाटे हुए दे जो पानी है उस दे च रखन, ताकि हिरदे नूं जोड़ के पड़ी हुई ये बाणी दृष्टि दे राही उस बाणी दा पानी दे प्रवेश करन, ताकि वो पानी पानी ना रहे, वो पानी अमृत बन जाए। हकीकत है हिरदे दे च लोभ है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे दे च वासना है, अखां दे राही प्रगट आउंदा है। हिरदे विच परबल हंकार है, अखां राही प्रगट आउंदा है। पर हिरदे विच वसी हुई बाणी होवे तो ये बाणी दा अमृत अखां दे राही बाहर प्रगट आउंदा है, और उस सख नूं अगर एक टिक पाणी विच रखिया जाए तो बाणी दा वो अमृत अखां दे राही पाणी विच प्रवेश कर जांदा है। इस तरह पंज प्यारे पंज बाणियां नूं पढ़ के अमृत नूं गुरु विधि अनुसार तैयार करदे ने। ये प्रथा धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चलाई। विच
ਖੰਡਾ ਨਾਲ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ। ਖੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ, ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਸਾਰਾ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਖੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਉਸਦੇ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੀਸ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੰਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀਸ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚਰਨਾਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਠੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਵਕਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਰੋਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਕਤਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਸਰੋਤਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੱਚਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਕਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੋ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਲੋ ਸਿਰ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਜਦ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूर्ण करो धरो जय आसा। इना पंजा विच मेरी झलक है कि पंजा दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। इना विच ते मेरे कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इना पंजा को अमृत दी दात मंग रहे ने। अब अमृत छकाओ जैसे कमली में। जिस तरह ये अमृत लेने ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया थी, इस तरह मैं थोड़े कोलों प्राप्त करना है। और वाकई जद पन्या ने छकाया सतगुर प्रसन्न होए, हाँ तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नु प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे है ओही अमृत छका सकदे है। और ओही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जिस ते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा है, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छके उदी दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, उसके बोल अमृतमयी हो जाते ने, उसका जीवन अमृतमयी हो जाता है। क्योंकि अमृत छकते हाँ उसनों रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेरा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का हुक्म, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा। दरअसल सिख

0: तक जाता है तो सिर तो लैके पैरां तक जिदन नाम दे ध्यान च जुड़ गया चोला बन जाएगा। देखो ये रूहानी व्याख्या है। जदों असी ये चीजा नू गुरबाणी च लभांगे साडा मन गुरु वाले पासे तुरेगा। रत्ता पहनन मन रत्ता सफेदी सतदान नीली स्याही कदा करनी पैरन पैर तिहान। खालसा जी आप जी कमर कस्से बांधदे हो। कमर कस्सा इस करके भी कई वार बन्निया जांदा है बंदे दा मोटापा काबू आ जाए। हां जी अक्सर अजकल बेल्टां भी दिंदे आ ना। पुराने समय कमर कस्सा ए बंदा शरीर ठीक रहे। इत्थे महाराज जी ने कहा जे बाहरों कमर कस्सा बनीए ते ए मोटापा घटन तो हट जांदा है ते जे संतोख दा कमर कस्सा बन लेंगा ते लालच दा मोटापा घट जाएगा। कमर बंद संतोख आ पोशाक बा तू सबर दा कमर कस्सा कर तन जोबन तेरा नाम हे वाहगुरु जी। लोकी पैसे ते जवानी पिछे खान ते पान पिछे जिंदगी कर दिंदे आ। मेरे वास्ते जवानी ते पैसा तेरा नाम है। जे नाम आ गया चेते बुढ़े भी जवान आ जे नाम चेते नहीं आए जवान भी बुढ़े हो गए। देखो किड्डे प्यारे शब्द के रत्ता पहनन मन रत्ता सफेदी सतदान नीली स्याही कदा करनी पैरन पैर ध्यान कमर बंद संतोख का धन जोबर तेरा नाम। बाबा जी जे नाम भुला के सी ये कपड़े पाइए। कहन लगे बाबा होर पहनन खुशी खुआर जे खुश ना पाने खुआरी पैदा कर। बाबा होर पहनन खुशी खुआर जित पैदा तन पीड़िया मन में चले विकार कबीर उजल पहरे कापरे पान सुपारी खाए। हुण अगली गल थोड़ी जी खान ते आ जी। मैं किसे दा कोई विरोध नहीं करदा। साडे जम जम के जिन्ना मर्जी वेखो अजकल किसे नू कहन दी हज भी कोई नहीं। हर बंदा आजाद है जी इस मुल्क च। पर फिर भी मेरी बेनती है कि लंगरां वल ध्यान देना चाहिए। हां जी माड़ा बंदा तो गुरुद्वारे लंगर नहीं करा सकता। लालो कित्थे लंगर कराऊगा जी। इत्थे इकले आप जी दी तो कहानी नहीं। मैं उदन कहा सी तुसी पंजाब च जिहड़ा याद रखियो ट्राली जांदी हुंदी सी पिंडों हरमंदर साहब नूं जां आनंदपुर साहब मेले ते जां सरहंद मेले ते सड़क दे उत्ते टाट भी नहीं सन विछाए हुंदे। लोह वाले प्रशादे ते धूड़ा उत्ते जमिया हुंदा सी। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲ ਗਏ ਆਇਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅੰਨ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਓ ਘਰੋਂ ਖਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਬੋਡੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹਿੱਸਾ ਖਿਆਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਅੰਨ ਕਰਾਂ ਪਖੰਡ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਾਰਬੇਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲਈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਛਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕੀ ਦੂਜੇ ਸਾਂ ਸੜ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਾਂ ਮੈਂ ਅੰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਨ ਚ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale Washington.
2: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश कर दिया ने सर्व रोग का अवखद नाम। आज संसार वाल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दियां सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटे जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: नानक कहूं नसी जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस बसूले पाछे पावे,
0: एक बस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक पीना दे दस पी हिर ले,
0: दो मूड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से नाही चारा,
0: ठाकुर की जय सद नमस्कार,
1: जाके मन लगा प्रमीठा,
0: सर्व सुखता हूँ मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व सुख नानक तिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: हात पीत बरते अनत उलास,
1: अपनी ईमान कश बहो शाह ले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही घोवे,
0: और उसका विश्वास न हो,
1: बस्ते सागर रख है,
0: रोकी आज्ञा मन है मथ,
1: उसके चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक पांत माया के हित,
0: सरपर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया से रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दी सह सो चालन हार,
0: लपटर होत अंधा धार,
1: घटाउ से जो लावे ने,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्री सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
0: मिथ्या होमे ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या वस्त्रा,
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता,
1: मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान,
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान,
1: सिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे,
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरै,
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार कुता वहे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत बिकारा,
1: बेबूझे मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
1: वृत्ति साक्त की आरजा,
0: साच बिना कह होत सुचा,
1: बिरथा नाम बिना तर अंध,
0: मुख आवतता कह दुर्गंध,
1: फिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाए,
0: एक बिना ज्यों खेती जाए,
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपण के निरार्थ दाम,
1: धन तन तेजन दे कट बस्यो हर नाउ,
0: नानक ताके बल बल जाओ,
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन ही प्रीत मुखो गंड लावत,
1: जानन हार प्रभु प्रवीण,
0: बाहर पीक न काहू भीन,
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन मै मरे,
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
0: जिसकी सीख तरह संसार,
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता,
0: नानक उन जन चरण पराता,
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन,
1: आपे आप करत नबेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा,
1: पाप स्यान सकल ते रहत,
0: सब कछ जाने आत्म की राहत,
1: जिस भावे तिस लए लड़ लाए,
0: शांत अनंतर रहा समाए,
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जप।

0: मन आई
1: हुकम बूझ परम पद पाई
0: इसके ऊपर नहीं विचार
1: जाके मन बसया निरंकार
0: बंधन तोर भय निर्वैर
1: हर दिन पूजा गुरु के पैर
0: हे लोग सुखी है परलोक सुहेले
1: नानक हर प्रभु आपे मेले
0: साथ संग मिल करो आनंद
1: उनका वो परमानंद
0: राम नाम तत् करो विचार
1: दुर्लभ देखा करो उदार
0: अमृत वचन हर के गुण गाओ
1: प्राण तरन का यह स्वभाव
0: आठ पैर प्रभु को नेरा
1: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा
0: उपदेश हृदय बसावो
1: मन इच्छे नानक फल पावो
0: हलत पलत दोए लेहो सवार
1: राम नाम अंतर उतार
0: पूरे गुरु की पूरी दिखिया
1: जिस मन बसे ते साच परिखिया
0: मन तर नाम जपो लिब लाए
1: दुख दर्द मन ते पाओ जाए
0: सच व्यापार करो व्यापारी
1: दरगह निधह खेप तुम्हारी
0: एक टेक रखो मन माहे
1: नानक बहुर न आवे जाहे
0: इससे दूर कहाँ को जाए
1: उबरे राखन हार ते आए
0: नेर भव जपै सकल भव मिटै
1: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै
0: जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख
1: नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटै हंकार
1: जिस जन को कोई न पहुँचन हार
0: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा
1: नानक ताके कार्य पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट
1: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
0: चरण कमल जाकी अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: भन सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पुरख प्रधान
0: जिस मन बसै सोहत निहाल
1: ताके निकट न आवत काल।

0: पूरे गुर का सुन उपदेश
1: साहब ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमरहु गोबिंद
1: मन अंतर की उतरै चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहु
1: साथ संग अग्न सागर तरहु
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चितव हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: सुनत कमाप्त होत उदार
1: आप तरह लोक निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजै
1: सुन सुन अंत करे प्रभ गाजै
0: करके गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभ आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सबरीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आ जंजाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
1: नानक नवही खेप हमारी
0: प्राप्ति।

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइयै जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइयै जे जरवाना पर हरे जरवेश करिंदी आइयै को रहना भरिए पाइये को रहना भरिए पाइये।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की संतोखी जिन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझ ने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का

0: महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदिए पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड्डिए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके एक गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: लोक मोहल्ला पहला सचकाल कूड़ वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदाल जे को तो कुबेरती हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए फैबिज खुम चढ़ाइए सरु पतन होए नान पक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोए
1: मोहल्ला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पुठानी मलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव भगत करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राण सटिए फिर पाया हो रे नानक तग न तुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत डर गए अंदर पाइये तग न तुट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पल के थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न की बे तग आया पे बते।

ओडिशा महो दयाल कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

नानक कूड़ रहया पर भो। मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे प्रभा।

जितेंद्र सबको वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याईया आपे ही करम कराएंदा वटहो वटा वट में इतनी सरे सर तंदे लाएंदा नदर उपठी जे करे सुरता ना काहो कराएंदा धर्मंगन पिखना पाएंदा धर्मंगन पिख

नमस्तुल प्रणाम है समस्तुल प्रणास अगंजुल अनाम समस्तुल निवास निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी स्वतर्मंग

प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के भूप भली बेदन आवत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदांग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत भविख पवान के भूपत कौन गन नहीं जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को।

फुन दिन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं तल मैं पल ही पल मैं साप थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन केह बहु पुंज खपेंगे साध समूह पर सन फिर जग सत्र सब अब लोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरात अब जोन तर लोको राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव।

0: बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आंदे और चंगे मनुखां दी कदी भीड़ नहीं आंदी। चंगा मनुख को एक करदा तो भीड़ ते भैड़ियां दी तो फिर ताकत भी भैड़ियां कोल आंदी है। नेक कोल ताकत नहीं आंदी क्योंकि कल्ला हुंदा है। ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब का कहना है गलत उल आम सही, बड़े ध्यान नाल सुनना मैं समाप्ति करा, गलत उल आम सही 99 बंदे अगर गलत होवन ते एक सही होवे वो एक बंदा गलत समझिया जाएगा। गलत उल आम सही, बहु गिनती अगर गलत है तो सही समझी जाएगी, एक बंदा अगर सही है तो गलत समझिया जाएगा। और हमेशा संसार दे कोई एक कद सही होंदा बाकी ते सब गलत होंदे, ओके ना होना, कोई कद सही होंदा है। भगत कबीर कहने लोग कहें कबीर बौराना, सारा बनारस कह रहे हैं सी कबीर पागल है, पागल है। हुण बनारस दे वासियां नूं कौन दसे, इक्को ही ते बंदा जिहड़ा सियाणा है बाकी ते सब पागल वसदे पए ने, इक्को ही ते मनुख है जो सियाणा है। लोग कहें कबीर बौराना, ते जे पागलां दी भीड़ होवे सियाणा कल्ला होवे तो पागल जित जाणगे। बनारस चो कढ दित्ता सी कबीर नूं, बाकी जिंदगी उसने मगहर दे च बतीत कीती सी, उन्हों बनारस छोड़नी पई सी। गलत उल आम सही, बहु गिणती दे च लोकी गलत होवन तो सही समझे जांदे ने, और एक अद मनुख किधरे सही होवे तो गलत समझिया जांदा है क्योंकि एक है कल्ला है। और हमेशा देखना इस तरह के पैगंबरी अवतारी पुरुष अपने आखिरी समय कल्ले ही रह जाते, कोई साथ नहीं देंदा, कोई नहीं देंदा। दूर क्यों जाओ, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते संग सखा सब तज गए को ने बे साथ। दुनिया दे लोग साथ लभदे ने सुख दा, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने कोई किसी का साथी नहीं। बंदा कह देंदा वह मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने मुगालते चै तो बिल्कुल मुगालते चै। सुख में बहुत संगी भये दुख में संग ना को, तेरे साथी नहीं ने सुख दे साथी ने। जब तेरे को दुख होया ना तो चिराग लेके भी साथी लभेगा नहीं, मिलने नहीं लभणगे। कौन दुख नाल रिश्ता जोड़े, कौन दुख दा साथी बने, सब सुख दे साथी होंदे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पालक लवो 99 सेंट्स दी गुच्छी 10 पाउंड स्नो बॉय रसेट पटेरोस 298 दा बैग वड्डा साइज गोभी दा फुल 298 दा अते 4 पाउंड इंडिकेंट साबत लाल मसर लवो 298 दा बैग
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जा कॉल किरण @604581 1900

जर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक ओही विराजमान। वो कीड़ी दे च भी है, हाथी दे च भी है, वो जर्रे दे च भी है, वो सूरज दे च भी है। अस्थि कीटी त्रिलो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। वो ऐसा है, पूरे आया अपने कृत देच, पूरे आया। उदे स्वभाव देच भय नहीं है, वैर नहीं है। मनुख दी पहचान एक ते रूप तो होंदी है, एक उसदे स्वभाव तो होंदी है। हो सकदा रूप बड़ा सुंदर होवे, स्वभाव बड़ा भैड़ा होवे। हो सकदा स्वभाव बड़ा चंगा होवे, रूप बड़ा भैड़ा होवे, क्रूप होवे, चंगा ना लगे। अष्टावक्र, लत्तां भी टेढ़ियां, बांवां भी टेढ़ियां, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी, अठ थां तो शरीर दे च बल करो। उस जमाने दे च दुनिया दा सब तो क्रूप मनुख अष्टावक्र, पर उस जमाने दा मन करके स्वभाव करके सब तो सुंदर मनुख अष्टावक्र। तन करके बदसूरत है, मन करके खूबसूरत है, स्वभाव चंगा है। तो एक बंदे दी पहचान होंदी है उसके रूप तो, दूजी पहचान होंदी है उसके स्वभाव तो। परमात्मा दा स्वरूप वो एक है, उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रही है, जो कुछ हो रहा है उसे तो हो रहा है। वो सदीवी है, कायम दायम है, करता है अपने

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करन जा रहे हैं, अरदास करन जा रहे, सिर्फ अरदास करन जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करन ले जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करन जा रहे हैं, सेवा करन ले जा रहे हैं, पुन करन ले जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया, पुन सुनिया होया, कीर्तन सुनी हुई कथा, इसका फल की है अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। एक कदों निकलती है, जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है, उंज नहीं निकलेगी। उंज बथेरी अरदासा आउंदियां ते मनुख कर, कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकलती है फिर व्यर्थ भी नहीं जाती, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं, परशियन दे कहने ने अर्जोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अर्जोई है। संस्कृत दे हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अर्जोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हाथ जोड़ के अर्जोई करने, दस्त बस्ता हथानु जोड़ के अर्जोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुर कहंदे ने यक अर्ज, एक मेरी अर्जोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, गोश कन्ना नु कहंदे ने, ऐ करतार जे तू कन ला के सुने। मनुख जिथे आउंदा है उत्थे ही उसदे कन आउंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकदे, क्योंकि असी जिथे बैठे कन उत्थे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उत्थे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आउंदा है उसदियां इंद्रियां उत्थे ही आउंदियां, उसदी जबान उत्थे ही आउंदी है, उसदियां अखां उत्थे ही आउंदियां। जिथे है उत्थे ते वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा, जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अरजोई कीती जा सकती है, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे, हे प्रभु तू कन कर भाव सुन। हे करतार, हे सृष्टि दे रचनहारे, एक अरजोई एक बेनती है। फिर अगलियां पंक्तियां जिस दे अगों बेनती कर रहे ने उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी,

0: पर्शियन विच अरबी विच सच नू हक कहंदे ने हक जैसे भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह ऐ कलगीधर तुसी ते हक हो भाव सच हो हकीकत सचाई हक सच पर्शियन विच अरबी विच सच लई जेड़ा शब्द है वह है हक सतगुरु कहंदे ने हक्का ऐ सच्चे हक्का ऐ सच्चे हक्का कबीर कबीर कहंदे ने बुजुर्ग नू वड्डे नू पुराने नू पुरानी चीज नू कबीर कह देंदे ने बुजुर्ग बुढ़े मनुख नू भी कबीर कह देंदे ने संत फकीर नू भी कबीर कह देंदे ने और परमात्मा नू भी कबीर कहंदे ने वड्डा बुजुर्ग है कदीमी है एक कबीर लवज फारसी दा भी है और अरबी दा भी है अरबी च भी कबीर कहंदे ने पर्शियन च भी कबीर कहंदे ने वड्डे नू हे हक्का हे सच दे स्वरूप हे सच्चे हे सब तो वड्डे हक्का कबीर करीम तो बख्शिंदे तो तेरे स्वभाव विच दया ही दया है तेरे स्वभाव विच रहमत ही रहमत है बख्शिश ही बख्शिश है हक्का कबीर करीम तो बेऐद परवरदिगार ऐ पालन हारे तू निर्विकार है तेरे च कोई ऐब नहीं तू निर्विकार है निर्मल है अति निर्मल है अति निर्मल है निर्विकार है और सृष्टि दा करणहार है तू हक है तू कबीर है इस तरह मेरे पातशाह उस प्रभु दी अरदास विच जो है महिमा गायन कर रहे हैं। हां जी
1: दुनिया मुकमे पानी तहकीक दिल तमी
0: हे प्रभु मैं ते अपने दिल नो समझाना ए जगत फानी है नासवंत है तू हक्का है जगत ते झूठ है छाया है तू कबीर है ये सब कुछ ते तुच्छ है बेमैने है दुनिया मुकामे फानी ये जो टिके होया जगत दिसदा पे है ते मिट जाएगा ये ते फानी है नासवंत है ऐ मेरे दिल तू ऐसा जान हे प्रभु हे करीम हे हक्का मैं अपने दिल नो ऐसा समझा रहा ऐसा कह रहा सब कुछ नासमंत है किसी वक्त खुलासा करांगा धर्म दा प्रभु दा सारा ज्ञान मौत दे ज्ञान तो आरंभ होंदा है लोभ वासना अहंकार सारा जीवन दी लालसा तो शुरू होंदा है जितनी जीवन दी लालसा उतना अहंकारी जितनी जीवन दी लालसा उतना लोभी जितनी जीवन दी लालसा उतना वासना दे ग्रसिया होया जितना मौत दा ज्ञान उतना बैरागी जितना मौत दा ज्ञान उतना सतवादी जितना मौत दा ज्ञान उतना आत्मदर्शी धर्म दा ज्ञान शुरू होंदा है मौत दे ज्ञान तो सतगुरु कहंदे ने मैं दिल नू समझा रहा सब नासवंत है सब कुछ मिट जांदा है सब कुछ खत्म हो जांदा है ऐ मेरे दिल ए सच करके जान ए मैं चंगी तरह तहकीकात करके वेख लिया छान बीन करके देख लिया सब कुछ नासवंत है सब कुछ नासवंत है ऐ मेरे दिल सच्चा जान केवल उसनों वड्डा जान केवल उस परिपूर्ण परमात्मा नूं। हां जी

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पालक लवो 99 सेंट्स दी गुच्छी 10 पाउंड स्नो बॉय रसेट पटेरोज 298 दा बैग वड्डा साइज गोभी दा फुल 298 दा अते 4 पाउंड इंडिकन सावत लाल मसर लवो 298 दा बैग
2: गुरदेव सिंह बाथौर डेयरी लेके आए ने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नियर साउथ सरी वाइट रॉक क्लोज टू द बॉर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम एंड बिजनेस इन्वेस्ट करो 8 एकर्स अते 100,000 स्क्वायर फीट दी ग्रीन हाउस नर्सरी बिजनेस विच एंड बी योर ओन बॉस तुहाडी अते तुहाडी फैमिली लई सुनहरा मौका जिवें विच नर्सरी दे नाल नाल फाइन बेडरूम हाउस टोटली रीमॉडल विद इनग्राउंड आउटडोर पूल रिटेल शॉप वेयर हाउस प्राइवेट स्पेस अते होर भी बहुत कुछ आज ही संपर्क करो गुरदेव सिंह बाथौर एट 604-351-5
3: समुंद शाह सुल्तान गिरहा से तीर मारता

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते।

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती कोई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नू पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडन वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्श।

परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहिब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, तन गुरु नानक साहिब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती तन गुरु नानक साहिब जी ने एक मन हो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। तन गुरु नानक साहिब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहिब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहिब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहिब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहिब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहिब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने, इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां, जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावां, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी कोई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख, परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता।